बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौन त्यावै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया दीक चलाई तेग वाही दे किंडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख हो।

साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजे सा बाप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनाई, साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बसता गोचर लह, साधु के संग अजर सह, साध के संग बसे थान उचे, साधु के संग महल पहुँचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है, साधु के संग सो धन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सुबह सुदेवा, साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग लूकत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई पल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदय वसै, नानक उदरै साध सु रसै, साध के संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै परम मीठा, साधु के संग घटका डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुने तेता बख्यानै, साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते उच्ची, साध की शोभा मूझते मुच्ची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे कस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को शोक। ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर्थ एक ज्योम सौदा, को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गनाओ, नानक ज्यो पावक कव सह सबाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय परगास, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही विमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभाव करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरेना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चेना, ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो पल पला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह वसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता, ब्रह्म ज्ञानी कह होए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अधाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

0: सवार सिगारिया
1: गर्भगन में जिन्हें उबारिया
0: व्यवस्था तुझे प्यार है दूध
1: जो बन भोजन सुख सूद
0: प्या ऊपर साग सहन
1: मुखे प्याओ बैठ को दहन
0: गुनगुन कछु न बुझे बरसात ऊपर सुख बसे
1: सुत प्रात मीत बनता संग हसे
0: बरसात पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक मुल्ला
0: बरसात पोगे सब रसा
1: सगल सामग्री

0: इसे दया है सदा मने अंदर आठ पै हर सिमरो तीस रसना नानक सदा दया ये ध्यान जोग
1: पाठ पटंबर डावे।

0: प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: जय प्रसाद हस्त कर चले,
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले,
0: जय प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सहज।

0: को जाप
1: जय परदातर कारज पूरे
0: किसे जान मन सदा हजूरे
1: जय परसा तू पावे साच
0: रे मन मेरे तू ताशु राच
1: जय परसा सब की गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप बज पाए जपे सो ना
0: आप गवाए सो हर मन गाओ
1: कृपा ते होए परगास
0: प्रभु दया ते कमल विगास
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु

0: खोत,
1: साध के संग मिटे अभिमान,
0: साध के संग प्रटे सो ज्ञान,
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा,
0: साध संग सब होत न बेरा,
1: साध के संग पाए नाम रतन,
0: साध के संग एक ऊपर जतन,
1: साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
0: नानक साध की शोभा प्रमाय समाने,
1: साध के संग अगोचर मिले,
0: साध के संग सदा पर फुले,
1: साध के संग आवे बस पंचा,
0: साध संग रस पुंचा,
1: साध संग होए सब की रेन,
0: साध के संग मनोर बहन,
1: साध के संग न कतु तावे,
0: साध संग स्थित मन पावे,
1: साध के संग माया ते पिन,
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
1: साध संग दुश्मन सब मीत,
0: साधु के संग महापनीत,
1: साध संग किस्यो नहीं बैर,
0: साध के संग न बिगा पैर,
1: साध के संग न ही को मंदा,
0: साध संग जाने परमानंदा,
1: साध के संग न ही हो ताप,
0: साध के संग तजे सब
1: आपे जाने साध बढ़ाए,
0: नानक साध प्रभु बने आए,
1: साध के संग न कबू तावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे,
1: साध संग बस्त अगोचर लहे,
0: साधु के संग अजर से,
1: साध के संग बसे थान ऊंचे,
0: साधु के संग महल पहुंचे,
1: साध के संग दृढ़ सब तरह।

0: निस्तारे
1: साधु के संग सोतन पावे
0: जिस दंते संगो बरसावे
1: सा संग धर्म राय करे सेवा
0: साधु के संग सो बासुर देरा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: सा संग अमृत गुण गायन
1: सा के संग सर्वथान गम
0: नानक साधु के संग सफल जनम
1: सा के संग ने कछ काल
0: दर्शन भेटत होत निहाल
1: सा के संग कलखत हरे
0: सा के संग नरक पर हरे
1: सा के संग इया हुआ सुहेला
0: सा संग बिचरत हर मेला
1: जो इच्छे सो ही फल पावे
0: साध के संग ना बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साधरित बसे
0: नानक उदरे साथ सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग ना मनते बिसरे
0: साध संग सब पर निस्तरे
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग कट कर डीठा
1: साध संग भय आज्ञाकारी
0: साध संग भय हमारी।

0: अंतर उधारे
1: बस प्रेत मुगत पाथर को तारे कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: जुगत किते न पाइये तरम
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पर ब्रह्म का निवास
1: जिसका

0: कई कोट पे तीर्थवासी,
1: कई कोट ब्रह्म में उदासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते,
1: कई कोट तपीसर होते,
0: कई कोट आत्म ध्यान तार है,
1: कई कोट कप का विचार है,
0: कई कोट नवतन नाम ते आवे,
1: नानक करते का अंत न पावे,
0: कई कोट पे अभिमानी,
1: कई कोट अंधज्ञानी,
0: कई कोट कृपण कठोर,
1: कई कोट अभिघातम निखोर,
0: कई कोट पर दर्द को हर है,
1: कई कोट पर दुख न करे,
0: कई कोट माया श्रम माहे,
1: कई कोट पर तेज प्रमाए,
0: जित लावो तित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
1: कई कोट पाथर ग्रह निप जाए,
0: कई कोट पवन पानी वे संत,
1: कई कोट देश भू मंडल,
0: कई कोट शस्य सूर्य खेतर,
1: कई कोट दे दान इंद्र सी छतर,
0: सगल सामग्री अपने सूत तारे,
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे,
0: कई कोट राजस तामक सातक,
1: कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शासक,
0: कई कोट किए रतन सुमंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट किए चिर जीवे,
1: कई कोट गिरि मेर सुरन ठीवे,
0: कई कोट जखे किन्नर पिशाच,
1: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
0: सत्य नेरे सबूते दूर,
1: नानक आपल पत्र आपर पूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक सुरग निवासी,
0: कई कोट जन्म

0: कोटाकाश ब्रह्मंडल
1: कोट होए अवतार
0: कई जुगत की नौ विस्तार
1: कई बार पसरे पासार
0: सदा सदाई के कंकार
1: कोट की नेबो पात
0: प्राप्त होए प्रभु।

0: हाथ होए ता सब कुछ ले
1: जो जो तिस पावे सोई करे
0: अनजानत बिखिया में रचे
1: जे जानता पना बचे
0: परमे पुला दे दिस्तावे
1: निमक में चा

नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्व को नाथ कार्य वपरा जियो ज्योति पावे सोई पुंतियो नीच में बसे कबु सो हर ग्रंथ से कबु निंद चिंद व्यवहार कबु उपकास प्यार बेता भ्रम विचार नानक आप मिलावन हार नृत्य करे बहुपात कबु सोए रे दिन रात महा क्रोध विकराल कबु सर की उतरवाल होए भय बड़ राजा कबु पेकार नीच का साजा कबु अपकीरत में आवे कबु पला पला कहावे ज्यों प्रपावे तिम ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोहता लावे ध्यान तट तीरथ स्नान कबू सिसा मुख ज्ञान कीट हस्त पतंग होए जिया अन जोन पर में पर मिया रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रपावे तिवे नचावे तिस पावे सोई होए नानक दूजा वरना कोए कबू साथ संगति हे पावे उस स्थान ते पहुर ना आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश नाम रते एक रंग सदा से पार ब्रह्म के संग जो जल में जलाए खटाना जो ज्योति संग ज्योति

0: सोनरपति होवत स्वान सोवत विष्टा का जंत
1: जन्म जन्म मरे भो जोन ब्रह्मावे
0: सो मूरखंदा ज्ञान
1: नानकी आम कथा के सुखावे
0: तिन समान कत संग न जावे
1: पल भीतरता का होए विनाश
0: खिन में होए जाए बस मंत तरम राय तिस करे खुआरी सोजन नानक दरगे परवान श्रम पावे सगले विस्तारे
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार हर दर दर को कैसे गवे तिसी से पुलाई निकट न आवे
0: कौन नानक ताकि निर्मल सोए तब इसको

तब लग तर मराए देश जाए गोर पहचाना ने को चुके त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे नह तिरतावे खब खब मरे सुपन मनोरथ बिरते सब काजे बड़का भी किसे प्राप्त होए।

आपे रचा सबके साथ, सब कुछ उसका करने हार, थान अंतर एक सोए, कौतल करे रंग पार, नाने कीमत कह न जाए, गुर प्रसाद के बखियाने, कोट मदे के बेले चीना, अत सुंदर पार अनूप, काट काट सुनी सर्व

संतन के दुखन काज जो लवे, संत के दुखन त्रिगर जोन के रमाए, संत के दुखन सब को चले, संत के दुखन नीच चाहे, नानक संत पावे ता होए बिगत पाए, संत का निंदा के टिकर ना पाए, संत का निंदा परमेश्वर मारा, संत का निंदा दुखिया दीन, संत के निंदा को सदा जोग, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोग, संत का दुखी किसे गाने मिलत, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी सदा भिखारी, संत की दुख ना सुख दे टरे, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी ते कला न पहुंचे, संत का दुखी जड़ पाए, जो साथ ना मिलत की लोथा, अपन बीजा पे ही खाए, नानक संत पावे ता ले वार, जो जल बिहुन मछली तड़पाए, जो पाव की इंद्र ने त्रापे, जो बाढ़ दिल के तमाए वेला, संत का दुखी सब मिथ्या कहत, नानक ज्योतिष पावे सोई थेया, संत के दुखी को तरगे मिले सजाए, संत का दुखी ना मरे ना जिवाए, संत का दुखी उठ चले निराशा, जैसा पावे तैसा कोई होए, नानक जाने सच्चा सोए, सदा सदा तिसको नमस्कार, जिसे त्यागो सास की रास, जैसा करे तैसा को थिया, दूसर

0: तैसा दिष्टाया
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोदत सोदत सोदत सिज्जा
1: गुर प्रसाद का सब बुझा,
0: जब देखो तब सब कुछ मूल,
1: नानक सो सुखम सोई अस्थूल है,
0: इस जन्म में न किस मरे
1: आपन चैतापी करे,
0: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
0: आपे आप सगल में आप।

0: संता संग चाल
1: और त्याग विख्या जंजाल
0: तन तन कह सब कोई
1: मुख उजल कर दगे सोए
0: व्यापार विरला व्यापार
1: नानक ताके सद बलियारे
0: चरण साध के तोए तोए पी
1: अरब साध को अपना जियो
0: साध की धूर करो स्नान
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान
0: सार सेवा बड पागी पाइए
1: सार संग कीर्तन गाइए
0: अनेक बिगंते साधु राखे
1: हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: उठ गई संता दरियाया
2: सुख नानक तै पाया
0: मृत्य को जीवालन हार
1: उखे को देवता दार
0: अर्पण दान जाकी दृष्टि माहे
1: पूरब निके का लेना पाए
0: सब किच तिसका यो करने जो
1: तिस बिन दूसर हुआ न होगा
0: जप जन सदा सदा दिन रैनी
1: सत्य उच्च निर्मल करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सोजन निर्मल थिया
0: जाके मन गुर की प्रतीत
1: तिस जन आवे हर प्रभु चीत
0: भगत भगर सुनिए तहलोए
1: जाके हृदय
0: सच करनी सचता की रहत
1: सच दे सच मुकैत
0: साची दृढ़ सचाया का
1: सच वर्ते सचा।

0: कृपा जिस आप करे
1: नानक सो सेवक गुर की मतले
0: विश्वे गुर का मन माने
1: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
0: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ
1: अनेक बार गुर को बल जाओ
0: शरम निदान जी का दाता
1: आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता
0: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
1: एक से आप परम
0: सह स्यान ले आना चाहिए
1: नानक ऐसा गुर पट पाकी पाइए
0: सफल दर्शन पेखत पुनीत
1: बेटत
0: संग राम गुण रवे सुनकर बचन करन आगाने पूरा गुर अखे ओ चाका मंत्र गुण बेंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे तिस लय मिलाए
0: जेबा एक उस्तत अनेक
1: सत पुरख पूर्ण विवेक
0: काहु बोल न पहुंचत प्राणी
1: अगम गोचर प्रभु निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई
1: ताकि कीमत किने न पाए
0: अनेक भगत बंधन नित करे
1: चरण कमल के देश परे
0: सत बलिहारी सतगुर अपने
1: नानक जिस पर साध ऐसा प्रभु जपने
0: ए हर रस पावे जन कोए
1: अमृत पीवे अमर सोए
0: उस पुरख का नाही कदे विनाश
1: जाके मन पलटे गुरदास
0: आज पैर हर का नाम ले
1: सच उपदेश सेवक को दे
0: मोह माया कै संग न ले
1: मन में राखे हरे हरे एक
0: अंधकार दीपक परगासे
1: नानक ब्रह्म दुखते नासे
0: तपत माए ठांड वरताई
1: नंद पिया दुख नाठे पाई
0: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
1: साधु के पूर्ण उपदेशे
0: पौ चुका निरपो होए बसे
1: सकल व्याध मन देखे नसे
0: जिसका सातिन कृपा तारी
1: सात संग जप नाम मुरारी
0: चित पाई चुके ब्रह्म गवन
1: सो नानक हर आजा सरवन
0: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
1: कला दार्जन सगली मोही
0: अपने चरित प्रभ आप बनाए
1: अपने कीमत आपे पाए
0: हर बिंदु जा नाही कोए
1: सरवण रहते को सोए
0: ओत पोत रव्या रूप

0: निर्मल होए तुम्हारो चित,
1: राखो मन माए
0: जन्म जन्म के किल बिख जाए, संत कहत रहत गत पाओ, सहस वाय नाम ने गुण गाओ, बिन जाए हो मैं बिक पैर, सास ग्रासियर नाम समाल,
1: सत्संग पावे सदना हर पुण्य सर कवि आरन, सरनंतर को देख
0: को नानक जाके मस्तक लेख,
1: एक जप एक सला
0: एक सिमर एक को मन आए,
1: एक के गुण गावनंत
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एक एक ह्याप
0: पूर्ण पूर्यो प्रव्याप
1: विसार एक ते बे
0: एक राज पराचत गए।

पार ब्राह्मी श्रद्धा पूर्व सास सास प्रभु में त्यागो नानक मांगे नाम प्रभ सार हर रस पावे बिरला कोए पूरन पुरख नहीं डोलाने उपजे जाओ साथ के संग अंतर प्रकाश मिले बलाग नानक।

0: कष्ट पदी
1: कार्य कष्ट न दिसेता
0: पाप उन तब कहते होता
1: या मन सुन समाद
0: तब बैर विरोध के सांग कमात
1: इसका बनते हन न जाप
0: तब हरण सो को किसे व्यापत तब मोह कहाँ किस होवत परम नाने करने हार न
1: दूजा
0: तब अन मुकुट को किसको गनी तब नरक सुर को कौन अवतार तब शिव सगत को कित ठाए
1: आप अपनी जोत तर
0: तब कवन निडर कवन कत डरे
1: तब करने हार
0: नानक ठाकुर अग में अपार तैं जन्म वरण को कहा विनाश
1: करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कहो किसे होए तब चित्र को पद के पूछत लेखा तै कौन छूटे कौन बंधन बाते नानक आपन रूप आप ही प्रजा
1: पुरख पुरख पद होता।

तय किसे भोग कवन तृप्तावे नाने करते का ना ही सुमार तब कवन माए बाप मित्र सुध पाई तय वेद देव का कहूं चीन तो सगन अब सगन कहां बिचारे तय कौन ठाकर कौन कहिए चेरा।

0: पसरे पसार संत प्रताप
1: आपे धनी
0: उनकी शोभा
1: आपे कौत करे आनंद
0: आपे रस भोगन निर्जोग
1: भावे दिशा नाय लावे।

0: को जाए।
1: सब तेरे एक निरंजन राय
0: जुग जा के सब हाथ
1: अंतर बार जानो साथ
0: गुण निधान बेअंत अपार
1: नानक दास सदा बलिहार सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप
1: अंतर जामी रहो व्याप
0: कृपाले जीवन बो पांत
1: जो जो रचिया सो तिसे त्यात
0: इस पावे तिस लैल मिलाए
2: इस पावे
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या
1: करण हार नानक एक जानिया
0: लागा हर एक नाए
1: तिसकी आस न मृत्यु जाए
0: सेवक को सेवा बने आए
1: हुकम बूझ परम पद पाई
0: ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन बसिया निरंकार
0: बंधन तोर पे निर्वैर
1: आंदन पूजे गुर के पैर
0: ये लोग सुखिए पर लोक सुहेले
1: नानक हर प्रभ आपे मिले
0: सत्संग मिल करो आनंद
1: गुण गाओ प्रभु।

तेरा अंत न पारा वरिया, राग आसा महला चौथा सो पुरख, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम पारा सब त्यावै है सब त्यावै है तुझी, हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दाता तारा, हर

0: जो अश्क है शहादत के वजीना छोड़ देते हैं, समझ के खिलौना जिस्म अपना खुशी से फोड़ देते हैं
1: जी।
0: ना हूरों की हसरत ना तख्त तो ताज की बालम, खुदा भी दे खुदाई तो वापस मोड़ देते हैं। हाजरा खदूर जहराज कुर चवर छत्र तख्त दे मालक मालके कनाथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र बारगाह दे च पहुंचे हो, शहीदां नूं याद कर रहे हो, नमस्कारा कर रहे हो, श्रद्धा दे फुल भेंट कर रहे हो। सब तो पहला आप फतेह दे नाल संध पाईए, कोई रसना वांझी ना रवे, प्यार दा सबूत दो दो इकर जोड़ फतेह प्रवान करो। आखो जी
2: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: असी जिस दिन पहले दिन आए सी ना, मैं उस दिन भी स्टेज ते गल कीती वी, साडा दिल झंझोड़िया गया जदों असी शहीदां दीआं तस्वीरां देखीआं।
1: सच वे
0: अज बच्चिआं वल्लों, यूथ नौजवानां वल्लों जिहड़ी प्रदर्शनी लाई गई है बाहर, सच जाणू तुसीं कल्ले कल्ले शहीद दा जीवन पढ़ के देख लिओ, दिल नूं इक दर्द हुंदा है। अज उहनां नूं याद करदे आ, जून महीना हुंदा है, हरेक वार साढ़े तो पहला भाई साहब विचारा कर रहे सी बच्चों नूं इतिहास दसना है, तो सच जाणो बच्चों नूं इतिहास दस किदां सकदे आ। कई वारी तो असीं कल्ला कीर्तन ही सुणदे हाँ, किताबां पढ़न दा टाइम नहीं, हर किसी की लाइफ इत्थे बिजी है, पर इतिहास तो जाणू, अपने वड्डियां तो जाणू, असीं हो किवें सकदे हां। मैं बहुत बार ये गल कही नहीं हुंदी, अज असीं उहनां नूं प्रणाम करदे हाँ। जदों किसी दे परिवार का जी चले जावे असी कहने असी दुख का प्रगटावा करते हैं, माड़ा होया असी अफसोस जाहर करते हाँ। मैं कहनी तुसी अफसोस जाहर करते हो, बस कई बार इन्ना ही पुछ के वापस आ जाते हो, पर जिन्हां दे परिवारां दे जी चले गए उन्हां नूं पुछो उन्हां दी कमी सारी उम्र कोई पूरी कर सकदा है? नहीं। पर जिन्हां ने शहादत का जाम पीता उन्हां नूं की लोड़ पई सी? संतां दी गल करदी साड़ी कौम नूं अतवादी आख्या जांदा है, संतां नूं अतवादी आख्या जांदा है। जिहड़ा अत चकदा होवे अतवादी ते ओह हुंदा है, जिहड़ा दूजिआं दीआं घरां धीआं नूं उहनां दे घरां च पछावे, जिहड़ा दूजिआं दीआं धीआं नूं जिहनां नूं नहीं कोई रखदा उहनां नूं उहनां दे घरां च वसाया, ओह अतवादी हो सकदा है? ओह जिहड़े नितनेम करन वाले बाणी पढ़न वाले उहनां नूं की लोड़ पई तलवारां चकणीआं पैण? पर समा हालात कुछ इदा दे बन गए
1: जी।
0: बहुत सारिया विचारा कई बार साडिया भी होंदिया, मैं कहनी हुंदी भी अज बहुत बार तुसी देखोगे जड़े कौम की खातर अपना आप कुरबान करते ने उन्होंने घर के हालात देख लियो, जड़े कौम लई अपना आप कुरबान करते ने फांसी के रस्से दे चुमदे ने, यह साडे लई भी एक सवाल है। असी आजादी की गल करनी, असी आजादी की गल बाद करांगे, असी उन्हां दे परिवारां दी सार लैंदे आ। कोई देख के कह रहा सी कहिंदा देखो जिन्हां ने सरकारां नाल मत्था लाया उन्हां दा अपना कख नहीं रहा, आ देखो जिन्हां ने सरकारां नाल मत्था लाया उन्हां दे घरे की है, बालियां वालियां टुटियां छत्तां। कोई प्यार वाला सज्जन बैठा सी कहिंदा ओए नहीं भोलिया दा मतलब होर है, कहिंदा जिहड़े अपना घर बनाउंदे ने ओह कौम दा घर नहीं बना सकदे, जिहड़े कौम दा घर बनाउंदे ने उहनां दा अपना घर नहीं बणदा। बहुत सारे लोग जिहड़े अज अपना घर बनाउण वास्ते लगे ने। मैं बड़ी वारी ये गल करदी हुन्नी जदों असी भी स्टेजां ते आउने आ, अज असी जे प्रचार करदे आ ते साडे मगर कौण है? संगत बहुत माण दिंदी है, पर जिथे साडा उन्हां शहीदां लई फर्ज बनदा असी उत्थे भी पहुंचणे। जदों भारत की गल करिए, हिंदुस्तान की गल करिए, 1947 की गल करिए ना, मैं पिछले दवाना दा जिक्र किया भी जदों गोरे काबज होए अंग्रेज आ जिन्हां दे मुल्कां अज असी रहिंदे आ, साडे बच्चे जिन्हां दे गुलाम हो गए नौकरी करदे आ, जदों असी गल करते हैं ना भी शेरे पंजाब का राज काल ते गोरे ईस्ट इंडिया कंपनी लैके गए लूण का व्यापार करने वास्ते, पहला लूण का व्यापार करके आपस ही लड़ पैंदे सी जिवें भरा लड़दा ही, फिर इन्होंने एक दूजे तो बचण वास्ते अपने लिए फौजां रख लिया और आपस से लड़ाई बंद कर दी, उन्होंने साडे नाल लड़ाई मोल ली और साडे मुल्क ते कब्जा किया। जदों पंजाब की गल करते हैं शेरे पंजाब का राज काल, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
2: ਜੀ,
0: ਬਈ ਉਦੋਂ

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस

ख्वार हुए सब मिलेंगे, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कृपा करो हो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण नाम विचारो कोई। माटी का क्या तुप है स्वामी, मानस की गत एही। हों आया दूर हों चल के,

मनुआ नाम तेरे संग साई तै केवल नाम संग तेरे चले हर को नाम फिर माए उदारी

कर गले उड़ने बावे निज कहिए तो समझे पूरा जतन करे तो भी सरभंग नहीं हो तो सुखाना नानक तुमरी कृपा करे जो गहराई दास उपरीत अनंत केल माया रंग रसाय काल नावे मुड़े चीत

विघ्ना जो कीर्ति जाए जो कृपा के नाथ दा नानक दा का बल बल जाओ मने प्रीत मुख गुण दावत बार देख ना काउ बिन आ जा जन मरे इसकी सीत्र संसार नानक कुंजन चल प्राता अपना किया मन है।

ज्ञानी समुद्भना नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी कवि सब ब्रह्म

0: पार्षद
1: वैष्णो सोजि सुपर सुपरसन्न
0: कर्म
1: करतो है न कर्म
0: बहुबल
1: की इच्छा नहीं बाचा।

मंत्र सर्व को ज्ञान, जो जो जपत इसकी गत होए, कृपा अंतर उतार सर्व रोग काओ खत नाम, काओ जुगत कित ना पाई है तरम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, गौतम राम तिस नदरी आया सदा।

संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन सुबाते ही, संत के दुखन तान रस्त होए, नानी संसंग जिंदगी बीते, संतन के दुखन काल भी लगे, संत के दुखन त्रिगर जोन के माए, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन नीच नीचाए, नानी संभावे ताऊ भी कर पाए, संतन निंदक निंदक निंदक माए, संतन का निंदक अमृतशरी मारा, संतन का निंदक दुखिया दीन, संतन के निंदक को सुना भी जो, नानी संभावे ताऊ उसका भी होए मुख, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी सदा विकारी, संत की दुख ना सुखते करे, नानी संभावे ता लय मिलाए, संत का दुखी किते काज ना पहुँचे, संत का दुखी उजड़ पाइये, जो साल बिना में तक की लोथा, आपन मिल जाते ही खाए, नानी संभावे ता लय वार, जो जन जो बचे तकराए, जो पावे की नहीं जाते, जो बुआर तल के माइंड होएगा, संत का दुखी सब जा गया तो, नानी जो किस बारे सोई थे आ, संत के दुखी को दर्द मिले सजाए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत का दुखी उठ चले निराशा, जैसा भावे तैसा कोई होए, नानी जाने सच्चा सोए, सदा सदा किसको नमस्कार, तुझे जाओ सास विलास,

मानु की तू प्रीत त्याग सर्व निरंतर एको सोए गए गंभीर गए सुजाना कृपा दान दयाल बसंद नानक कै मन अनराव मनसा पूर्ण जो कर पाया सोई होग तिसका मंत्र जाने होर सर थोक सुनिए गर ताके अपने तपि सिर ग्रस्त में होगी नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया सगल देव आर्य अवगा।

जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना बे करे तिरंग प्रभु अविनाशी एक अहंकार करे पूरे पूरन सठाए अपनी कीमत आपे पाई जब जब जी वे नानी कर नाव नाम के दारे खंड रमंग नाम के दारे सुनन ज्ञान ज्ञान नाम के दारे से कलाकार नाम के समुद्र सुन समन नानी चौथे पर मैं सूजन कर पाए पुरख सत केवल प्रदान सात पुरख सब माय समानी मूल सात से सात उत्पत जिसे बुझाए किसे सब बली विश्वास सत नानी गुरते पाई सत्य जन जाके हृदय प्रवेश नाम जपता की जत होए आपे जाने अपनी मित गत अवन न पूछ करत विचार नानी ज्योतिष बाबर सोवरतिया जिन बूझा तिसाया स्वाद गुर के वचन पदार्थ लय जाके संग करे संसार

0: पूजा सत सत सेवार नाम सत सत ध्यानहार आपे गुण आपे ओंकारी सुरत सत सत जसंता नानक सत सत प्रभु सोए नारायण बिने नानक एक ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल गीत
1: ठाकुर का सेवक जाने संग
0: प्रभ का सेवक नाम के रंग
1: रुख को प्रभ पालनहारा
0: सेवक की राखे निरंकारा
1: सेवक जिस दया प्रभ
0: तारा नानक सो सेवक सास सास मारे
1: अपने जन का परदा ढाके
0: अपने सेवक की सर पर राखे
1: अपने दास को दे बढ़ाए
0: अपने सेवक को नाम लिखाई
1: अपने
0: कोई न
1: रखे
0: रखे सेवक पूछते ऊँचे नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया वसंत करे लश्कर को डाके ताको राख दे कर हाथ इसके कर्तव्य थे जात सब यहाँ का रखा सोए जब प्राणी पर बल को जाने
1: बार
0: अमृत मंत्र जपिए इसके चवन नहीं।

सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गावे सतगुर सिक्की करे प्रतपाल सिक्की गुरदुर मत मन हिरे सतगुर सिक्के बंधन काटे सतगुर सिक्को नाम दंदे सतगुर सिक्का हलत पलत सवारे गुरु के गृह सेवक जो रहे आपस को कर कछु न जनावे मन बेचे सतगुर के पास सेवा करत होए नेकामी अपनी कृपा जिस आप करे प्लीज बिस्वे गुर का मन माने सतगुर जी से दे हर नाव संविधान जी का दाता धन में जन जन में पार ब्रह्म सह सियान ले आना जाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत बेटा संग्राम गुण रवे भजन करण ना गाने पूरा गुरु अख्यो जाका मंत्र कीमत नहीं पाए देवा एक उस्तत अनेक काहू बोल न पोचत प्राणी मेरा हार निर्वैर सुखदाई अलिख भगत बंधन नित करे सद बलिहारी सदगुर अपने यह हर रस पावे जन कोई उस पुर का नाई कदे विनाश आठ पर हर का नाम ले ओ माया के संग न ले अंधकार दीपक प्रगास तबद माए ठांड बरताई जन्म मरण के मिटे अंधे से हो चुका ने वह होए बसे जिसका सातिन कृपा धारी पाई चुके ब्रह्म गमन निर्गुण आप सरगुण भी होई अपने चर प्रभु आप बनाए हर दिन दूजा नाही कोई पोत रव्या रूप रंग।

0: दार
1: रूपाव समीत विचारो
0: तम तम गुण में उदारो
1: कारण कारण सो प्रभु समरात
0: दृढ़ कर गौ नाम अर्वत
1: यो तन संचो हो भगवंत
0: संजना का निर्मल मंत
1: विकास राखो मन माए
0: सर्व रोग नानिक मिट जाए
1: जिस तन को चार कुंड उठता वे
0: सोधन हर सेवा ते पावे
1: जिस सुख को नित वाचे मीत
0: सो सुख साधु संग करीत
1: सो भाग करे पली करनी
0: सासु बाब जर की सनी
1: अनेक पावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हर औखद लाए
1: सर्व दान में हर नाम निदान
0: जप नानक दरगह परवान
1: मन पर बो दो हर के नाए
0: रे दिस दावत आवे ठाए
1: को बिघन लागे कोई
0: जाके हृदय बसे हर सोई
1: दाती ठांडा हर ना
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: आवे से पुनो यास
0: भगत बाया तम पर गास
1: कर जाए बसे अविनाशी
0: कौन आने काटी जम फासी
1: सात विचार कहे जन साचा
0: जन्म मरे सो काचो काचा
1: आवा गवन मिटे प्रभु से
0: आप प्यार शरण गुरुदेव
1: जन्म का उदार
0: हर हर सिमर प्राण दार
1: पाप न छूटन हारे
0: सिमर सासत वे विचारे
1: हर की भगत करो मन लाए
0: मन मन सत नानी फल पाए
1: चालस तेरे तना
0: तू क्या लपटावे मूर्ख मना
1: सत मीत कुटुंब बार बनता
0: इनते कहो तुम कौन सनाता
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कौन छुटकार
1: असस्ती रात सवारी
0: झूठा ढंग झूठ पासारी
1: जिंदिए तिस बुझे न बिगाना
0: नाम सा नानी पछताना
1: की मत तू ले आने
0: भगत बिना वो डूबे साने
1: हर की भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: जान कमर राखो मन माए
0: जनम जनम जाए
1: आप जपो अपरा नाम जपाओ
0: सुनत कहत रह जपाओ
1: सार पूत सतार को नाम
0: सह सिवाय नानी गुण गाओ
1: गुण गाओ तेरी उतर स्मैल
0: न जाए हमें बेफैल
1: कोई अचंद वसे सुखनाल
0: साग रासर नाम समाल
1: साठ स्यान सगली मना
0: सासन पावे सजना
1: हार पूंजी संत करो बिहार
0: निया संकर के जयकार
1: हर को देख
0: और नानी जाके मस्तक लेख
1: एको जप एको सलाहे
0: एक सिमर एको मनाहे
1: एक के गुण गाओ
0: मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हरा
0: पूरन पूर रहो प्रभ्याप
1: अनेक विस्तार एक ते बै
0: एक राप राचत गए।

ताकि पादे वो अर्हाम पार्वमें सदा पूर सास सास प्रभ तुम्हें द्यावो भगत करो प्रभ की नतनीक नानक मांगे ना प्रभ सार हरस पावे दरला कोई पूरन पूरक नहीं डोला ने उजे चाव साथ ये संग अंतर पर का संग मिल लाग नानक नाम रते सुख होए सतगुर ते ने मन मत लई सेवक कीनो सदा निहाल जन्म मरण दुख ब्रह्म गया रव रया सत्संग अधूरी नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे जे जीवन जिया गुरु प्रसाद को बिरला लाखे जन्म जन्म का टूटा गांडे प्रभु अपना नानी जन ध्याया आन त्याग लगो वरनाम आज पौरे नाम पावो बिन

मन से साथ रंधोए मेरा रूप आवे संग गुर प्रसाद आनंद लया नानक रहया सब समाए मात्र सदा कृपाल सर्व बटा कर तत्पाल भगत राखे प्राणदार भगत बाला मन हीत नानक बलि सरन पर भगवान एक नम करके गुण गाए करके नाम की कथा मन भाई रसना जति हर अनीत हृदय से पूर्ण गुरु नानक।

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर पेख वनंतर की उतरे चिन्ह संत जना की धूल मन मंग सास रजन सागर करो नानक गुरु पूरे नमस्कार सास संग भज परमानंद गुण गोविंद अमृत रस पियो एक रूप जाके रंग अनेक दुख भंजन पूरन के पार नानक जी का ये धार अमूलिक लाल है रतन आप करे नो के निसार जाके मन लगा रंग सुन सुन करे प्रभु राजे नानक उदरे तिनके साथे करके प्राप्त बाप मिलाए अमृत नाम।

दाने का कर चीत जिस मन से सोहत निदान प्रदान पुरुष प्रकट सब लोए और न होए आमन जान नानी जिसे प्राप्त होए बुद्ध ज्ञान सत्य सिद्ध ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान सत्यम सकल देवदास समदर्शी एक निष्ठिता जिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन

वाहेगुरु जी की फतेह। रामकली की वार, राय बलवंत तथा सत्य डूम आखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाम करता कादर करे क्यों बोल हो गए जो खीव दे। नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीव दे। मधुर आत्म देव दी कड़क जोर परा कोई जी दे।

खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: जब लौनी पागले लार उदय तब लो परमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में मूड थे कबू मिटह नेरे पछतायो तात बचार जह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिने अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनायो तात बचार जह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिने अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: कल समुद्र पए रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानेओ पयो तह समसर सोई तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर पनमथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तख हर तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर पनमथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तख हर।

गावे को गुण वड़िया याचार गावे को साज करे तन खेहे गावे को जापे जिसे दूर।

0: चंत प्रसाद कथते के आछे जदेश के आपे जपेश
1: के आगज कर में के आप जबर में
0: के आभी जलो कह के आदित्य सो
1: के आप दूत बरने के विभूत करने
0: के राजन प्रभा है के तरमन तुजा
1: के अशोक बरने के सर्वा परने
0: के जगतन के त्री है के छत्रन छत्री
1: के बरमं स्वरूप के अनुपम अनुप
0: के आद अदेव है के आप अपेव है
1: के चित्रन बहीन है के अधीन है
0: के रोजी रजा के रही मेरी हा
1: के पाक बेअब है के गैब लगैब है
0: के अफुल गुना है के सहान सा
1: के कारण कनिंद है के रोजी दहिंद है
0: के राजक रहीम है के कर्मं करीम
1: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानी
1: के सर्वत्र कौन है के सर्वत्र पौन है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
1: के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है
0: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
1: के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज
1: के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है
0: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदान
1: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
1: के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
0: सर्वं कली में के परम फहीम
1: के अकल अलाम है के साहिब कलाम
0: है हसनुल वजू है तमाम।

0: मुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है
1: मुक्त प्रभा है सुजुक्त सदा है
0: सदैव स्वरूप है अपेदी अनुप
1: समस्त पराज है सदा सर्वसाज
0: समस्त सलाम है सदैव अलका
1: निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनुप है
0: आदुरूपे अनाथ स्वरूप
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाम
0: त्रिवर्गन त्रिभादे अगंजे अगाधे
1: सुपंग सर्वपागे सुसर्ब अनुरागे
0: त्रिभुक्त स्वरूप है अचिज है अछूत
1: के नरकम प्रणास है प्रतियो प्रवास है
0: निरुक्त प्रभा है सदैव सदा
1: विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनुप है
0: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा
1: अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनुप है
0: चाचरी छंद अपंग है।

0: व्यक्त है, अनास है, प्रकाश है,
1: अचिंत है, सुनिंत है, लिख है, अधिक है,
0: अलेख है, अपेख है, अटा है, अगा है,
1: असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है,
0: अनित्य है, सुनित है, अजात है, अजाद है,
1: चर प्रछंत व प्रसाद,
0: सर्वंहंता, सर्वंगंता,
1: सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता,
0: सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता,
1: सर्वंप्राणं, सर्वंत्राणं,
0: सर्वंकर्मं, सर्वंतर्मं,
1: सर्वंदुग्धा, सर्वंमुक्ता,
0: सावलचंतो प्रसाद, नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे,
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं बभूते,
0: माथं प्रमाथे सदा सर्वसाध्य,
1: अगाध स्वरूपे निर्बाध बभूते,
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे,
1: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे,
0: न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे,
1: न ताते न माते न जाते न पाते,
0: विशाखं सरीखे अमितो अमीखे।

0: ऊंजत गुण का जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। श्रीपद श्री भगवान पजे बिनंत को अंत के ताम सिधारे।
1: नान दे आदम दान संजम ने मनेक बिसेखे।

0: भजौ माता कंस करा पूर्ण सब्राता
1: किल बिक सगल दे को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता
0: जब दे दियाला पूर्ण ग्रह कंस काला
1: मन बाछत फल पावे सोई दुख न दिसे व्यापत कोई अड़िल
0: जो यास रस न पावे स्ने मोच लचतता आवे
1: दुख दर पो निकट न तिन नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई पादर शुद्धि अष्टमी रविवार तीर सतुत्र ग्रंथ सुधारा सोया
0: पाएंगे जब ते मेरे तब ते कुंग त्रिनी अनियो
1: राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न मान्यो
0: सास वेसो वेर

के मनवस्या जिन तुरो लिखिया आया, कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया। हर दया पवित होए गुरमुख जनी ते आया, कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जनी मन वसाया। करमी सहजन उपजे बिन सहजे सहसा न जाए, सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा इवजाए। हे तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।

0: सन्मुख होवे
1: होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले।
0: गुर के जन हृदय ते आए अंतरात्मे समाले।
1: आप छड सदा रह परणे गुर बिन अवर न जाने कोए।
0: नानक सुनो संतोष हो सिख सन्मुख होए।
1: जे को गुर ते विमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे।
0: पावे मुक्त ना होर थे कोई पुछो विवेकियां जाए।
1: अनेक जूनी भ्रम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
0: मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु।

0: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सोपिए विचो आप जाए।
1: साजियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
0: हरे आप मूलक है भगत नाके नानका जिन हर पल पाए।
2: हर रास मेरी मन वंजारा, हर रास मेरी मन वंजारा, सतगुरु ते रास जानी।

0: रस ना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए
1: प्यास ना जाए औरत किते जिथर हर रस पल्ले ना पाए
0: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुत ना तृष्णा लागे आए
1: ए औरस कर्मी पाइए सतगुरु मिले जिसे आए
0: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसे मन आए
1: ए शरीरा मेरे यार तू मैं जोत रखी ता तू जग में आया
0: हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया
0: गुर प्रसादी बुझे आता चलत हो आ चलत नदरी आया
1: कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग में आया
0: मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया
1: हर गाओ मंगल नित सकिए सोग दुख ना व्यापे
0: गुर चरण लागे दिन सपागे अपना फिर जापे
1: अनंत वाणी गुर शब्द जानी

0: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया
1: गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया
0: कहे नानक यो शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर स्यो चित लाया
1: ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम में ज्योत तरी हर बिन अवर न देखो कोई
0: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया
1: एहो वि संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया
0: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर कै हर बिन अवर न कोई
1: कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर

0: सद्गुरु मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
1: गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मचन परंपरा
0: गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा
1: गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र जप उतरा
0: गुरुदेव संगत प्रमेल
1: कर कृपा मूढ़ पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव
0: हर नमस्कार
1: देव संगत प्रभु।

0: जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा
1: जिया अंदर जियो सब किछ जान।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने त्यावै ताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यांतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई। तेग वाही देख के निठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बन बन कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने त्यावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यानतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहों साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई। तेग वाही देख के निठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यानतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यानतर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यानतर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल।

जब लव नहीं पाग लीलार उदय, तब लव भ्रम ते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बुडत थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार जह मथुरा,

गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वसुता के, जाका सतगुर पूरा, गगन दमामा बाजे परयो निशानै का, खेत जो मांड्यो सूरमा।